0: दूसरे दूर जा सकते हो रे इन्हें ये देना काजुनी चुर चुर
1: अच्छी
2: शांग के कंचे से चिंचो
3: जो तो सुने जो तो सुचे जा
4: सुचे जा सुचे
3: ने देखा सुचे जा सुचे जो तो सु बोल ला ताकि रंग शो सुंग मुझे जाए ना
1: 小龙母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行了，母这就行
4: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ